0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG

0: बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री एनएन दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की, ये वॉर सिचुएशंस की, या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो, तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क बीएसएफ को दिया गया था। और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर, साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो वो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
0: बिल्कुल
1: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और
1: इतना बड़ा
0: जी कि सब
1: जान, भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। बीएसएफ के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था।

0: जी
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे,
0: जी
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के ज़मीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा, और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे,
0: जी
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी, मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो
0: जी
1: जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 की रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
0: जी
1: वो गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
0: जी
1: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही, और
0: बिल्कुल
1: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फख्र की बात है
0: बिल्कुल
1: बड़े
0: बहुत सम्मान की
1: ऑर्गेनाइजेशन
0: बात है, और ये देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई, वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई, फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
1: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई, जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
0: कुछ बड़ा
1: खुदकश
0: करना
1: अटैक
0: है।
1: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए, और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
0: बिल्कुल
1: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
0: बिल्कुल
1: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
0: 36 घंटे
1: कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं,
0: जी
1: मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
0: डिजाइन किया।
1: बनाया था, डिजाइन किया
0: अच्छा
1: था, और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
0: बिल्कुल
1: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई।
0: जी
1: अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया, या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया, तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली
0: ओके
1: सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे,
0: हमारे या वो भागने की कोशिश करे।

0: करें, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी,
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया, ये बेवकूफ़ बना दिया इन्फॉर्मर शायद, कि हम सही जगह नहीं आए। और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के, जो कि वॉल में फिट था और
1: अच्छा
0: बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे। कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था,
1: भी नहीं
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा
0: गजनबा
1: है
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था। तो
1: बिल्कुल
0: वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई, जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
1: अच्छा
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो
1: शायद
0: शायद
1: वो
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती थी।
1: ज्यादा होती
0: मार तो
1: बिल्कुल
0: हम तब भी लेते, लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती। और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे, घर के फरीक,
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके
0: निकले, सब सेफ निकले।
1: मतलब सविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की
1: ऑपरेशन
0: गई,
1: को भी
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन
1: जी
0: छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई। भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर
1: जी
0: उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है,
1: यानी
0: आंख
1: कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर जो आपके ऊपर फायरिंग हुई अटैक हुआ उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता
0: टेबल
1: लगा
0: के ऊपर ही OT में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर
0: चल
1: हम
0: गया।
1: इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे और आप हमसे बात कर सकते हैं सवाल कर सकते हैं आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई।

0: उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया, तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
1: अच्छा,
0: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
1: अच्छा,
0: रही बात पैर में जो गोली लगी तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई, लेफ्ट चेस्ट में जो लगी उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया करीब

0: लेफ्ट चेस्ट में जो लगी उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे,
1: अच्छा
0: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया करीब 1 इंच साइज का स्टील का एक होता है
1: अच्छा
0: कमेंडेशन,
1: जी जी
0: मैं
1: जी
0: अपने यूनिफॉर्म पे लगा
1: जो
0: रखा
1: छाती पर
0: था।
1: लगता है।
0: जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया,
1: अच्छा
0: और वो मेरे वाइटल पार्ट जो कार्डिक एरिया
1: जी
0: है
1: जी
0: उसमें
1: दिल
0: ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया।
1: ओ
0: तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है, और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉज्ड हो गई लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा,
1: जी
0: पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत
1: अच्छा
0: एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई,
1: ओह
0: तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मुझे दिख रहा था,
1: जी
0: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया,
1: जी
0: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और अब ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है बह के
1: जी
0: बाहर आता है।
1: जी
0: फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया।
1: जी आपने जैसे
0: और क्या,
1: बताया
0: उस कमरे
1: फायरिंग के
0: में
1: दौरान।
0: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल
1: और
0: सकता था,
1: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर
0: बिल्कुल
1: में।
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था,
1: जी
0: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग
1: अच्छा अच्छा
0: यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी
1: जी
0: पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने
1: जी
0: एक जीवन रक्षक के तौर पे
1: बिल्कुल,
0: ड्राइंग रूम में लगा रखा
1: जिसने
0: है
1: आपका दिल
0: उसमें,
1: बचाया।
0: यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, बस सफिशियंट
1: बिल्कुल
0: थी वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस
1: एग्जैक्टली
0: भी दिमाग में आया
1: एग्जैक्टली
0: कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो
1: अच्छा
0: शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो
0: कि
1: जाता है और फिर
0: हाँ कि मैं
1: होश
0: अगर कुछ दिन
1: चले
0: बाद
1: जाते हैं।
0: मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा, मतलब ये जो कहते हैं ना कि
1: जी
0: मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने
1: आने
0: लगते हैं।
1: जी जी जी
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए
1: जी
0: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं हो पाई
0: एस्टेब्लिश नहीं
1: होगी
0: हो पाया, शिनाख्त
1: जाहिर है।
0: बाद में हुई,
1: जी
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था, और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्टर जनरल बीएसएफ मिले मुझसे,
1: जी
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट देवर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
1: जी
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा
1: जी
0: था।
1: जी
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू
1: क्या
0: एंड
1: बात कर रहे
0: बीएसएफ
1: हो।
0: टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफूर हो
1: हाँ
0: गया,
1: खत्म हो गया, सही
0: जब
1: कहा
0: नहीं
1: आपने।
0: लगा कि दर्द में तो हम थे,
1: जी
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी
1: बिल्कुल
0: पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट
1: सक्सेसफुल
0: होता है, अगर
1: बिल्कुल
0: आप फाइनल फतह कर लेते हैं,
1: जी जी
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना
1: हाँ
0: वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो
1: कम
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है,
0: हाँ
1: यस
0: ये
1: उसका
0: है
1: एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी
0: इतनी
1: थी
0: बड़ी
1: कि
0: थी,
1: उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल
0: हाँ
1: होगा।
0: बिल्कुल, ही वाज ए ड्रीम चेज फॉर एवरी
1: एग्जैक्टली
0: फोर्सेस, ही
1: बिल्कुल
0: वाज ए हॉट
1: बिल्कुल।
0: केक इन द वैली,
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो
0: कर ही रहा
1: अपने
0: था
1: नमूने
0: फॉर
1: पेश
0: मोर देन
1: करता।
0: 9 ईयर्स वैली में, 1994 से 2001 तक ही वाज ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंड

0: मार्क अटैक की 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस साड़ी मर्ग किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जेएनके असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001,
1: पार्लियामेंट
0: 13 दिसंबर 2001।
1: बिल्कुल,
0: तो उसने तो अटैक की पराकाष्ठा पे था इम्तहा, बिल्कुल कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवाद
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बरेसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: क्योंकि ये
0: अपॉर्चुनिटी देता हूँ, क्योंकि BSF एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल।
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था। मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल।
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल।
0: गाजीबाव के माद में घुसना कोई सिंपल,
1: और जैसे आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं,
1: मिलता नहीं।
0: और हुआ मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज़ वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी,
1: जी
0: बाय द आईसी स्कॉडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है या सिलचर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी बैज
0: बच्चन,
1: हाँ अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है
1: वो आपकी यादगार।
0: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है,
1: जी
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक
1: बिल्कुल
0: कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते हैं,
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक

0: आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता, वहां जान जाएगी या जान ली जाएगी।
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
0: या मरने का,
1: तीसरा कुछ नहीं होता,
0: तीसरा कुछ नहीं। या तो
1: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं,
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है। हाय सर, मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा, यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है जी, क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक के क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
0: बिल्कुल।
1: प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं, जिसके नाम पे बी के दत्त है।
0: जी
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच
0: सर। देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है, हो
0: जी
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
0: क्या बात,
1: उस फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए।
1: अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और 1 साल के बाद छूटे, और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का

0: करके गए थे
1: जी,
0: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फर्वर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
1: जनसेवा।
0: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
1: चारपाई
0: पे बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
1: जी,
0: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
1: नहीं
0: थे,
1: कर सकते थे,
0: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है वो, उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
1: जी,
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाई मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्करे तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए, उसके अलावा
0: ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा,
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा,
0: मेरे दिल से लगा हुआ है, मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा,
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है, जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए।

0: और उसको एंजॉय करिए। बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में, जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी
0: ये
1: है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया। गृह मंत्रालय के
1: जी
0: ऑर्डर से बनी है
1: जी
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी।
1: जी
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में। उस ट्रेजडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी,
1: ओके
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
1: जी
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में,
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी सर,
0: स्ट्रीम।
1: एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: लिखना
0: लिखना
1: चाहते हैं। यश शिंदे हैं
0: चाहेंगे।
1: ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर हैं कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप, नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है,
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी। आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती
1: बिल्कुल।
0: हैं, देश प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड
1: और सर
0: फॉर मी।
1: यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: मैं युवा
1: एक्सपीरियंस
0: पीढ़ी
1: शेयर।
0: को ये बताना चाहूँगा कि आपकी एक ज़िंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज़ हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है, तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके
1: जी
0: पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं,
1: जी
0: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के
1: बेशक
0: चलिए। शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।